सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक 1 विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE and CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन।
3: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मिला। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर, और दोस्तों लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मन पसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। दोस्तों बताना चाहूंगा गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर अभी 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सुबह के 10 बज चुके हैं और आप आनंद ले सकते हैं आपका मन पसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश का। दोस्तों बताना चाहूंगा ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, आपकी आवाज के साथ साथ आप सुन सकते हैं आपके मन पसंद गाने। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर पर आप कॉल करना ना भूले।

0: 6375। दोस्तों नंबर एक बार फिर सुने, 6378024475।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: नमस्कार जी।
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: फिल्म का नाम है मजबूर और गाने की बोल है देखा फूलों को कांटों पे सोते हुए।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो सर, राधे राधे।
1: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
0: आसाराम जागा सर।
1: आसाराम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सिटी अम्बेडकर धर्मशाला के पास से।
1: बताएं सर, आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से?
0: आ रहा हूँ बाबा पर तेरा भरोसा है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: नाम बताएं।
1: जी सर, मेरा नाम अक्षत है, मैं गंगापुर से बोल रहा हूँ।
0: अक्षत जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आप?
1: जी गाना है दौलत शौहरत।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी प्रोवाइड पे बेहतरीन।

0: हेलो डीएसएलआर।
1: यस सर, नाम बताएं आपका।
0: मैं डॉक्टर सितारे बिहार के वैशाली जिला से।
1: डॉक्टर सितारे बिहार से, सर बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: लैला मजनू का।
1: कौन सा गाना है सर लैला मजनू का?
0: उसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो
0: पर। मेरे दो मित्र हैं।
1: बिल्कुल बताएं सर, आपके बिहार के कौन कौन से दो मित्र हैं, उनका नाम भी बता दें आप।
0: गजराज लोधी हैं, विजय कुमार पांडे हैं और शारदा बाप है और आप भाई साहब हुए।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, सुना रहा हूँ आपको आपकी फरमाइश का ये गाना।
0: धन्यवाद जी,
1: वेलकम।

0: जी नाम बताएं सर।
1: जी नाम मेरा जय किशन है।
0: जय किशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं गंगापुर सिटी जीआर गारमेंट्स।
0: जी बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? मूवी का नाम है राज, तो मैं अगर सामने आ भी जाया करूँ।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: भी 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: वंदना।
0: वंदना जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर से।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: गाड़ी पाछे गाड़ी रहते थे वह लेकिन से डाडी रात।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी रिक्वेस्ट है।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं आपका।
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर, मोनिका।
0: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सर ढूंढ रही हूँ ऐसा दीवाना, थोड़ा सा पढ़ना, थोड़ा सा
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा सॉन्ग।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर।
2: हेलो,
3: नमस्कार जी।
2: नमस्ते सर, नाम बता।
3: हाँ, रतन लाल बोल रहा हूँ, मऊ कला से।
2: रतन लाल जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
3: हे मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, समय सही गाना।

0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका?
1: जम्मू से केशव शर्मा जी।
0: केशव शर्मा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अरे आज मुझे सुना दीजिए पांचवें फिल्म का गाना रेशम की डोरी।
0: रेशम
1: कहाँ गई और निर्दिया की रातों के बीच।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपका, आपकी चॉइस से।
1: ओके।

0: सर आपकी फवाहिश बताइए, स्वागत कर रहे हैं आप। कौन सा तो गाना सुनना चाहेंगे?
1: कव्वाली सुनेंगे।
0: हाँ जी कव्वाली।
1: हाँ
0: कौन सी कव्वाली है बताएं?
1: तेरा रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपका, आपकी फवाहिश की कव्वाली।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: आरबी पूजा।
1: आरबी जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर से।
1: बताएं आरबी जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: दिल गलती कर बैठा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का हिस्सा।
2: वेलकम टू दी सक्सेस पार्टी ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड जुबिन नौटियाल।

0: थे जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: हेलो गुड मॉर्निंग
1: गुड मॉर्निंग नाम बताएं।
0: आरती भाटिया।
1: आरती भाटिया जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: लालसोट से।
1: लालसोट से बताएं मैम कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: तुझसे प्रीत लगी है रात, तू ही मन में रखी है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सुनना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: कृष्णा।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: तेरी आंखों में दिखता जो प्यार।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपको, आपसे प्रोवाइड कर।
2: जूते संभाल लिए ना? थैंक यू। अब मुझे संभालने की ना ट्राई भी मत करना, और दो गज दूर।

0: हैलोवीन पार्टी पे कोई घाघरा पहन कर आता है क्या? She's so चांदनी चौक.
1: I think she's cute.
0: Worst you loser.

0: भवानी जी भाई।
1: जय भवानी दादा, नाम बताएं आपका।
0: विमल शर्मा मऊकला गंगापुर सिटी।
1: विमल जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर।
1: बिल्कुल सुनता हूं आपकी फरमाइश से।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन, शहर का नया मैजिक रेडियो DS89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो
0: धड़कन, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर।
4: क्या आप रेडियो DS से बात कर रहे हैं?
3: यस सर, नाम बताएं आपका।
4: बिना है।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप?
4: गंगापुर सिटी से।
3: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
4: मैं सर वो वाला गाना सुनना चाहूंगा कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा ही बेहतर है।
3: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सर।

0: से जमाना।
1: हेलो
2: हेलो सर, राधे राधे।
1: राधे राधे जी, नाम बताएं आपका।
2: मेरा नाम है सर महेंद्र कुमार।
1: महेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी जिया गारमेंट से सर।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: मेरा गाना है साहब परदेश पिक्चर का, उठे जो लाठी उसे संभल के उठाना, परदेश ही लौट के आना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

तो वक्त हो चुका है 11:05 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है। आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा

0: तो बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है पुरानी फिल्म में आरजू अजी हमसे।
0: निवेदन कर रहे हैं
1: मैं गंगापुर सिटी बालाजी चौक से।
0: बालाजी चौक से बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है पुरानी फिल्म में आरजू अजी हमसे रूठ कर हमसे बचकर कहां जाइएगा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका आपकी समझ का।

0: अच्छा
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।
2: हेलो जी, नाम बताएं।
3: सर नमस्कार, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ।
2: राजू लबानिया जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
3: एक फिल्म आई थी नई किस्मत।
2: किस्मत का कौन सा सॉन्ग है?
3: माही माही माही मैं छल्ला पवा दे।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: नमस्कार जी सर।
0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: जी मैं बोल रहा हूँ सालिम गंगापुर सिटी लोगो कॉलोनी से।
0: सालिम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहेंगे रेडियो डीएस से।
1: गाना सुन
0: तो आप अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दिल की तन्हाई को आवाज देते हैं।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: जी नाम बताएं।
1: अभी आई योगेश जांगड़े देने तरह 36 का।
0: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: फिल्म दीवाना से सुनवा देंगे, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं।
0: बिल्कुल सुना रहे योगेश जी आपकी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से सुहानी सुबह में प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
0: सभी श्रोता गण और आपके मित्र जनों परिवार जनों सबको नमस्कार सर। बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: आज जो गीत सुना है पिक्चर का नाम है एक रिश्ता बॉन्ड ऑफ लव और गीत के बोल है आपके आने से घर में कितनी रौनक है।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: नाम बताएं सर।
1: वीरेंद्र मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं मीना जी?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: स्टेटस।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: डेट मत
1: सोचो। हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है महेंद्र कुमार, रेलवे गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ।
2: कौन सा गाना सुनना चाहिए?
1: मैं गाना सुनना चाहता हूँ मैम, परदेसी बाबू पिक्चर का।
2: वो किसे सुना रहे हैं आपकी सरप्राइज करूँगा ना?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अमन मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: दिल तो पागल है दिल दीवाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:42 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: हेलो
1: हाँ
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नीलम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो नीलम जी?
1: गंगापुर सिंह की।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: नहीं हो नहीं हो
0: नहीं हो नहीं हो हाँ। हम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: जी तो नाम बताइए आपका। कहाँ से बात कर रही
1: हूँ?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं सिद्धू मूसेवाला।

0: खो गया।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS
4: 89.6।
1: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
1: मेरा नाम पूनम है।
0: से बात कर रही? कौन
1: गंगापुर से थी।
0: सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चुन्नी मैं सॉन्ग।
0: नहीं मैम, नहीं, गाने नहीं चलते ही।
1: माही वे सॉन्ग
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: काजल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: बिल्लापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: हॉपलेस।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: विश्वास।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जमुनापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बांधने वाली अड़ा का नो गिनती।

0: मीना
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? यहीं से देवी कॉलोनी से कर रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: सही आना तू तो अगला नहीं।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हाँ जी, विजय कुमार खटलाना, मिर्जापुर जंगलापुर सिटी से मिल रहा।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हम चलो तो दूसरा गाना सुनाइए मुझे।
1: हाँ जी,
0: हम आपके कौन फिल्म का

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: खुशबू।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सन्नी सन्नी सॉन्ग, बेबी कॉलर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: सिटी से।
1: कौन सा गा? हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुन्नू जैमनी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? हेलो
0: जी,

0: गंगापुर सिटी की धरकर
1: देखो आप सज धज के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय, क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक।
0: गंगापुर सिटी की धरकर Radio DS.

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों, नए तरानों के बीचों में बातें करेंगे कुछ खट्टी मीठी।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:03 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीच में बातें करते हैं आज अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में कुछ वार्तालाप।

दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस का खेल दिवस है दोस्तों। एक केवल एक मनोरंजन नहीं, एक साधन नहीं, बल्कि एक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो खेल हमें स्वस्थ रहने का अनुशासन, सीखने का टीम भावना विकसित करने और चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य लोगों को खेल के प्रति जागरूकता करना, ये संदेश देना है कि खेल शारीरिक व मानसिक विकास के लिए वैदिक जरूरी है। खेल हमारे जीत और हार दोनों को स्वीकार करना सिखाता है। एक खिलाड़ी मैदान में जीतना का संघर्ष करता है, उतना ही जीवन में मजबूत बना देता है। आज के समय में मोबाइल इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण बच्चों को, युवाओं को खेल मैदान में जुड़ाव कम हो जाता है। ऐसे में खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें आज हमारे दैनिक जीवन में खेलों के लिए भी समय निकालना चाहिए। खेलों से न केवल शारीरिक भी मजबूत होते हैं, बल्कि आत्मविश्वास में बढ़ावा देता है। नियमित अनुसार खेल गतिविधियों तनाव कम करती है और मन को प्रसन्न रखती है। ये कारण कि डॉक्टर भी हमें रोजाना को किसी न किसी शारीरिक गतिविधियों की सलाह देते हैं। हमारे देश में, भारत में भी खेल जगत में कई उपलब्धियां हासिल की जाती है, चाहे वे क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो या फुटबॉल हो। ये भारतीय खिलाड़ियों ने दुनिया में देश भर का नाम रोशन किया है।

दोस्तों, खेल हमें ये सिखाता है कि हमें सफलता एक दिन में नहीं मिलती, इसलिए हमें मेहनत, संघर्ष और धैर्य आवश्यकता रखनी चाहिए। ये गुण जीवन का हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13-111.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।

सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वर, 89.6 गाने सुने 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:47 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS Science Academy, FCI Godown Road, Gangapur City, near Sainik Nagar and Nasiya Colony. Sampark karein 800-55-98-377. Iske alawa 99-834-13111.

तो वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कूलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे। 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: एमबीबीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
4: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुके हैं 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक, फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBS ENCD।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: कुदरत ने सनम तुमको क्या शौक अदा दी है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाना की बोल है चिटिया कलैया दे अबे भी तेरी चिटिया कलैया दे, ये प्यारा सा मन से थोड़ा झूमता हुआ गीत आपके निवेदन करना चाहता हूँ।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अमन मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गुलजार का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिए गाना।

बहुत खेल खेल लिए मैडम, असली रिश्ता का तो नहीं बिरा पटेगा। अरे यार का केस है, यार तो छड़ा से न्यू एक अच्छे का।

0: हेलो
1: हेलो बहनी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कहाँ से आए बदरा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी
0: नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: सागर नाम है, कैसा गाना गाने से बोल रहा हूँ।
1: जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: गाना है बाल के खिलौने का।
1: गाने के
0: पहले से अपना सरदार उठाई है।

0: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: सर नमस्ते सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे चौधरी जी?
0: सुबह तो लग नहीं पाया फोन।
1: कौन सा सर?
0: सुबह तो फोन लग नहीं पाया
1: सर, सुबह कॉलिंग की वजह। कौन सा गाना सुनना?
0: बढ़िया गाना लेके आए।
1: हाँ जी बताइए।
0: ब्रजभूमि पिक्चर का है
1: गाने के बोल।
0: चारों धामों से निराला ब्रज धाम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू।
1: यू वेलकम।
2: कम्मा एक देत तो

वक्त हो चुका है 4:58 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर।
1: कैसे पूछना चाहोगी?
0: कौन यहाँ दिल से मिला ले?
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परेगा।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: ओम प्रकाश।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिन में तो मैं
0: ओके, मैं सुना रही हूँ आपकी फरमाइश पर। गाना हेलो

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरा यार हूँ मैं।
0: ओके मैम, सुना रहे आपकी सुनाई।

0: हेलो हेलो हेलो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज इन इंग्लिश। इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, पर आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 रेडियो डीएस, और इंग्लिश फनी लैंग्वेज तो है ही भैया। अमिताभ बच्चन का हमें डायलॉग याद है, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, वो सब कुछ याद है। पर आज एक नया टर्म मुझे मिला है। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, निबलिंग्स। अब निबलिंग्स क्या होते हैं? जैसे सिबलिंग्स होते हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों को सिबलिंग्स कहते हैं, वैसे ही हमारे जो नेफ्यू नीस यानी कि जो भतीजे या भतीजी होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में निबलिंग्स बोल सकते हैं। पर फिलहाल अब सॉन्ग सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: किसी के घर पर।
1: अच्छा वाह कि हमारा जो नाई है ना वो हिंदुस्तान में नॉर्थ कोरिया में नहीं, क्यों? क्योंकि 89.6 रेडियो डीएस आपने ट्यून इन कर रखा, अमेजिंग गाने तो आपने सुने ही, लेकिन आज का शो यही तक था। जाने से पहले कोई शायरी नहीं, एक अमेजिंग फैक्ट कि हमारा नाई और हम सबको बे शुक्र गुजार होना चाहिए कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए, क्योंकि वहाँ लड़कों को, मेल्स को सिर्फ 28 टाइप्स ऑफ हेयर कट अलाउड है, जिसमें से आप सिर्फ एक ही टाइप का बाल हेयर कट करवा सकते हो, और औरतों को, विमेंस को, फीमेल्स को सिर्फ 14 टाइप्स ऑफ हेयर कट अलाउड है। यानी इसके बाहर लड़के अगर 29th ट्राई करे और औरतें 15th ट्राई करे तो किम जोंग उन उन्हें सुनते रहो अमेजिंग गाने सिर्फ और सिर्फ 89.6 रेडियो डीएसपी।

सुबह की शुरुआत अगर प्रसाद से हो तो दिन कितना अच्छा जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रसाद की बहुत महत्वता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसाद होता क्या है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि प्रसाद केवल वो खाने की चीज नहीं है जो हमने भगवान को अर्पण की है। हमारा पूरा जीवन भी एक प्रसाद हो सकता है। वो हर चीज जो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाती है। वो हमारी बातें हो सकती है, वो हमारा कर्म हो सकता है, वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारा पूरा जीवन हो सकता है। तो सोचिए कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रसाद बना सकते हैं। लौटूंगी थोड़ी देर में, सुनते रहिए। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर इंसान अपने आप पे काम करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा जानना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये देखिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पे क्या पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट कर रहा है और कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो हमारी मानसिकता खराब कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता। और अगर हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लौटूंगी थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं कि अगर जीवन में ऊपर वाले की सहायता चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी, और सहायता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी की आर्थिक सहायता कर दें या कोई गरीब हमें मिले तो उसकी ही सहायता करें। हमारे आसपास कितने जने हैं जिनको हमारी जरूरत हो सकती है, जैसे बड़े बूढ़े लोग जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, अगर उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास ऐसे मौके ढूंढने लगे जहां हमको सहायता करने का मौका मिले। इसी सोच के साथ अभी यहां से जाती हूं, मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूं आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आपका स्वागत है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। चलिए आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे तो उसे बहुत दुख हुआ। वो भाग कर एक पास की दुकान में गया और उसके लिए बूट लेकर आया और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप भगवान हो। वो आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैं कल रात ही भगवान की अरदास कर रहा था। भगवान जी, मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लेकर दो। वो आदमी आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया और वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है, जैसे बादल टूटने पर पानी की फुहार आती है, मिट्टी टूटने पर खेत का रूप लेती है और बीज टूटने पर एक पौधे की संरचना होती है। इसीलिए जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करो तो समझ लेना ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। 89.6 डीएसएफएम पर मैं तनिषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं दनीशा आपके साथ। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुंह देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ ही सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सके। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने तत्काल उसे फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संतवाणी याद आई, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोए, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा न कोए। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे 89.6 डीएसएफएम पे, मैं तनीषा आपके साथ।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ, जहां सफरनामे में हम आपको सुनाते हैं खूबसूरत संगीत से सजे प्यारे प्यारे गीत। और संगीत की दुनिया में जब सुरीली आवाज की बात हो, तब किशोर दा का नाम ना हो ऐसा हो सकता है? उनके प्यार भरे नगमे आज भी हर जुबां और दिल की आवाज बनते हैं, तो आइए सुनते हैं उनके प्यारे प्यारे नगमों को।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। किशोर कुमार की बात किए बिना हिंदी सिनेमा और संगीत की बातें अधूरी हैं। किशोर कुमार की अजीबो गरीब हरकतों से परेशान होकर एक डायरेक्टर ने कोर्ट की मदद मांगी थी। उसने कोर्ट से एक एग्रीमेंट लिया था ताकि अगर शूटिंग के दौरान किशोर जी उनकी बात ना माने तो वो उन पर केस कर सके। इसीलिए अगले दिन जब किशोर जी शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे, तब जैसे डायरेक्टर ने करने को कहा वो वैसा ही करते रहे। और एक शॉट के दौरान वो कार से सिर्फ इसलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें बाहर निकलने के लिए नहीं बोला था। इसी फिल्म के एक और कार सीन में डायरेक्टर ने समझाया था, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन खट हो जाएगा। लेकिन किशोर दा कार से नहीं उतरे। उधर डायरेक्टर इंतजार करते रहे, अगले दिन पता चला कि वो कार से खंडाला चले गए थे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: क्या हुआ?
3: हाय, गम का फसाना बन गया। अच्छा
2: अच्छा जी,
3: एक बहाना बन गया। अच्छा
2: अच्छा

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: क्या कहा?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएस एफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। किशोर दा को लाइमलाइट में रहना और मीडिया टेंशन पाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो एकांत में समय बिताना पसंद करते थे और इंटरव्यू देने से तो नफरत करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसीलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा ली थी और साथ ही कमरे में रेड लाइट भी लगा रखी थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। किशोर कुमार भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा थे, लेकिन वो खुद को बॉलीवुड की पार्टीज और चकाचौंध से दूर रखा करते थे। लेकिन उन्हें खंडवा की दूध जलेबी बहुत पसंद थी। वो हमेशा कहा करते थे कि जब वो फिल्मों से संन्यास लेंगे तो खंडवा में जाकर ही बस जाएंगे। उनके इच्छानुसार उनका अंतिम संस्कार भी खंडवा में ही किया गया। सफरनामे में आज इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी 89.6 डीएसएफएम पे मदनीशा आपके साथ।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून किया 89.6 रेडियो टीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त आकाश, और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।